स्पोर्ट्स दी फुल अपडेट 9 बजे तो बाद। ते हुण समय के आपां थोड़ा जा म्यूजिक बैक टू बैक सोंग सुनांगे ते उस तो बाद आके गल करांगे गिफ्ट कार्ड स्कैम्स दे बारे।